0: मेरी माँ ने मेरे कैलकुलेटर आ कोई एमीजे कैलकुलेटर नहीं सीखा आ टेक्सस इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर सीखा बड़ी प्रोफेशनल थी मैं दो तीन महीने बाद से मंगवा सका चंगी तरह माँ ने तंग कर दिया माँ ने पता सीखा मेरी आदत नहीं चीजा मंगने जो तो माँ ने मेरे इतना बड़ा तोहफा दिया कैलकुलेटर मैं फटाफट जाके उन्हें चप्पी मारी पता उन्हें की किता और वापस मैंने चप्पी मारी हमेशा मैं सोचता सी मेरी माँ मेरे प्यार नहीं करती मेरिया छोटिया पैरों हमेशा चप्पियां मार रही थी पर मैनू नहीं
1: I told my girl I was on radiation.
2: This is the Silla, and you are listening to Radiation, the number one station for the Asian innovation.
3: Meri kudi, odi sehat theek nahi. Addi raat mini skirt paake clubban ch cheeka maar ke tapdi aa.
4: Koi na veera, assi desired effect nu sadunge.
5: ਉੱਪੜ ਵਾਲੇ ਕਾ ਨਾ ਜੱਫੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ 500 pound ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗੇ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਡ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ
3: ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਪੜ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁੜਕੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬੜ ਕਰ ਚਿਪਸ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਆ
5: ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸ਼ਕਲ ਇਜ਼ ਰਾਦਰ ਪੈੜੀ And top lip very hairy. 2,000 pound daan kar lo. Mere naal jappo.
6: The power of radiation compels you. Random guys of Soho Road compel you. Pervy uncles with X-ray glasses compel you. To leave this girl's forsaken body, so she's free to dress sensibly and dance to proper music on
7: radiation. The number one station for the Bagel Asian. Bagel Asian.
8: Hi, yeah, I just left the date. And I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute. He was a musician.